तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी।

जिसनु तू जाना ही सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव यतन सुख पाया

पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा ते डूबियाले। मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

अमरे दुष्ट सबै तुम कहावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर तारा।

काल पाए कर बिसुन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जुथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को, हमारी सकल प्रजा जनी आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख कर तुह कम हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब

संसार। एकै रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पोज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखी उबार या सिख संगरो। दोष्ट जिते उठपति उत्पाता सकल मलेश करूरण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संग।

तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि होता के ताप तनक महे हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वत सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण ते हारी आप हाथ दे ले उबारी सर्ब ठौर मोह सहाय दुष्ट दोख ते लेहु बचा सुबैया

मुख निंदक शाही वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी वड्डे भागां वाले गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। आओ शाम दे समय सतगुरां दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। जो बच्चे गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे कीर्तन दी सिक्ख्या प्राप्त कर रहे हैं उन्हां बच्चों वालों आओ प्यार सहित आरती का कीर्तन उपरंत पावन बाणी के शब्द कीर्तन सरवण करते हैं। उस तो उपरंत कथा विचारा होणगियां अते विशेष तौर पर पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई साहब भाई निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वाले जो पिछले दिनों तो शाम की हाजरी भर रहे हैं वो आप संगतां नूं ठीक 7:15 बजे तो पावन बाणी के शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। अज दा ते कल दा दिन भाई साहब जी दे कीर्तन हाजरी दा जो गुरद्वारा साहिब विखे बनिया होया प्रोग्राम अज दा दिन ते कल दा दिन है। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध संगतां गुरु चरणां विच पहुँच करके साध संगत जी कीर्तन दा आनंद प्राप्त करो अते सतगुरु जी दीआं असीसां प्राप्त करो जी। आओ प्यार सहित बच्चों पासों कीर्तन सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब संगतां गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। जो बच्चे गुरद्वारा साहिब विखे गुरबाणी कीर्तन की सिखलाई प्राप्त करते हैं, समूह बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अगले समय लई सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी उन्हां पासों पावन गुरबाणी शब्द विचार सरवण करिए 7:15 बजे तक। ਅਤੇ 7:15 बजे ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

संघ जप संघ पाओ संघ पूजा संघ बताओ संघ ग्रंथ मुखवेद पार संघ जो मन रहे उदास असंख भगत गुरु ज्ञान विचारो संघ सदिया संघ दातार असंघ सूर मोह पख सार संघ मोह लिवलाए तार कुदरत गुण का विचार वारिया जावा एक बार ज्योतर बाबा साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर संघ चोर राम खोर संघ अमर कर जाहे जोर संघ गाल वढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंघ कूड़े आर कूड़े फिराहे संघ मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सर करह पार नानक नीच गह विचार वारिया न जावा एक बार ज्योतर बाबा साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोवा असंख सरबार होए अखरी नाम करी सलाय अखरी ज्ञान गीत गुण गाय अखरी लिखण बोलन मान अखरा सत संजो बखान जिने लिखे दस

पौड़ी शिव की संतो की जिन सचो सच ध्याय उन्हें मंदे पैन रखियो कर शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े वनान पानी थोड़ा खा तू बख्श सकला नी देवे चढ़ा सवाया।

आ गई सर, कोई नहीं कोई नहीं भाई, कोई नहीं आ जाते नाले, बाबा जी आ जाएंगे जन। वाहेगुरु वाहेगुरु।

पुरहाओ आपे माशी माशुली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बौ बिदरंगला सखिय मेरा लाल नितरा वै सुहागणी देख हमारा हाल प्राण वै नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगस श्री राग महला पहला घर तीजा एहो तन धरती बीज कर्मा करो सलला पाओ सारंग पाणी मन किरसान हर हृदय जमाए लै यो पावस पद निर्बाणी काहे गर्भ समूढ़ आया पित सुतो सगल का लत्तर माता तेरे होए ना अंत सखाया रहाओ बिखै बेकार दुष्ट किरखा करै इन ताज आत्मै होए त्याई जाप ताप संयम होए जब राखै कमल बिकसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारै दस अठार मै अपरम प्रोचीनै कह नानक इव एक तारै श्री राग महला पहला घर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आब नित दे पानी होए किरसान ईमान जमाए लै पिस्त दोजक मूड़ै एव जानी मत जान सह गली पाया माल के माने रूप की शोभा इत बिधि जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो एह मन मिडको कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित पाख्या बोलै क्यों बुझै जानह बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी एह मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पिसंद जिन्नी कर एक त्याया तीह कर रखै पंज कर साथी नाउ सैतान मत कट जाई नानक आखै राहे पै चलना माल तन कितकु संजाही श्री राग महला पहला घर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आप खाक जिन बंद रहाई धन सिरजनहारो मरना मुला मरना भी करतारो डरना रहाओ ता तू मुला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया हो वह को रहे नाम भरिए पाई सोई काजी जिन आप तजया एक नाम किया अधारो है पी होसी जाय न जासी सच्चा सृजनहारो पंज वक्त ने वाज गुजारै पढ़े कतेब कुराणा नानक आखै कोर्स देई रहो पीना खाना श्री राग महला पहला घर चौथा एक स्वान दो स्वानी नाल भलकै भौकै सदा बयाल कूड़ शुरा मुठा मरदार तनक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हो बिगड़ै रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वसे चंडाल तनक रूप रहा करतार पाही सुरत मलुकी वेस होठ गवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा बहुता पार तनक रूप रहा करतार।

नाम त्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सितलाया। गुरपूरे बजी बधाई नानक।

गुण निंदाने अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे आस मनोरथ पूरन होवे पेट त गुरदर साया जियो आगम अगोचर किश मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे।

कथा सुनत मल सगली खोबे, पेटत संग सा संतन के, सदा जपों दी अल्लाह जियो, प्रभ अपना सास सास समारो, ए मत गुर प्रसाद मन तारो, तुमरी कृपा ते होई परगासा, सर्व मया प्रीत पाला जियो, सत सत

गावत सुनते सभी मुकते सोते आइए जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से फल पावे। सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सो को दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाइए सपो बिन से हर हर त्याइए।

जानो बिसु की बाड़ी जियो, संता से तिरंग ना लाए, साकत संग भी कर्म कमाए, दलाब दे कोई अज्ञानी, जड़ अपने आप अपाड़ी जियो, तेरी शरण।

सिमर सिमर सिमर गुण गामा काटिए जम की फसा जियो अमृत वरखे अनहद वाणी मानता ने अंतर सात समाणी तृप्ति अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दलासा जियो जिसका सा तिस ते

भूत दुश्मन सब सज्जन होए, एक स्वामी आया जियो जो किछ करे सो आपे आपे, बोध सियानप कुछ ना जापे, अपने संतानु आप सहाई प्रभ परम पलावा।

आप अकंती आप पसारा, लेपने जग जीवन दाते, दासन डिठे लैन बजोगा जियो, अंचल लाए सब शिष्ट तराई, अपना नाव आप जपाई, गुर बहुत पाया किरपाते, नानक

नानक नाम त्याई त्याई जीवे, बिनसिया परम पोतीठा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते कड़ी न लागे। पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुर मिल नहीं चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अन अन

गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले बड़ियाई आपे मिल मलावणिया माज महला तीजा एको आप फिरे परछन्ना गुरमुख बेखा ता एहो मन पिन्ना तिसना ताज सह सुख पाया एको मन बसावणिया हो वारी जियो बारी एक स्यो चित लावणिया गुरमति मानिकत कर आया सच्चे रंग रगावणिया राम ए जग भुला तै आप पलाया।

कर किरपा आप मलावणिया, माया मोए हो जग सुता, नाम बसार अंत बगुता, जिस ते सुता सो जगाए, गुरमत सो जी पावणिया, आपो पिए सो परम गवाए, गुर प्रसाद मुख

कर सच दड़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच बरते सवनी थाई, सच्चे सच समा बनिया, बेपरवाओ सच मेरा प्यारा, किल बिखी अवगुण।

आंदीन सार संभाले, आंदीन सार संभाल हर राखे, गुरमुख सहज सुभाव बणिया, तुद जीवन में होर न कोई, तुद आपे सिरजे आपे गोई, तू आपे ही कड़पन सवारे, नानक नाम सुभाव बणिया।

गुरु के सावद तिखा नवारी सहजे सुख समावनिया रतन पदार्थ पलल त्यागे मनमुखी अंदा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावनिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन बसाए आंदिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावनिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल वाणी हर गुण सहजे का बनिया सिमरत सास वेद बखाने परमे पुला तत् न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखों दुख कमा बनिया आप करे किस आखे कोई आखन जाइए जे पुला होई नानक आप करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंगे सहज सवाए गुर के शब्द हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हों वारी जियो बारी निरपौ मन बसावणिया गुर किरपा ते हर निरपौ ते आया पिख पौजल शब्द तरा बणिया राव मन मुख मुगद करे चतराई नाता तोता थाए न पाई जेहा आया तेहा जासी कर अब गुण पुछता बणिया मन मुखे अंधे कुछ न सूझे मरन लिखाए आई नी बूझे मन मुख कर्म करे नहीं पाए।

माया मोह सब सोध गवाई, कर अब गुण पुछता बनिया, सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन बसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावनिया, खिल बिख काटे क्रोध नवारे, गुर का शब्द

पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राथे गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया यात अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया, गुरमुख थापे थापे अथापे, गुरमुख जात पात सब आपे, नानक गुरमुख नाम त्याए, नामे नाम समावणिया, माज महला तीजा उत्पत पालो सब दे होवे, सब दे ही फिर उपत होवे, गुरमुख बरते सब आपे, गुरमुख बरते सब आपे, सच्चा गुरमुख।

पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तहात, बोला जे समझाइए पढ़िए स्मृत पाठ, अंधा चानण रखिए दीवे बले पचास, सौं चौने सोना पाइए चन चन खावे घास, लोहा मारन पाइए टह न होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंढ पवे संसार, राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखिया गंढ पवे जा खाए, काला गंढ नदियां मी चोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सद होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोह मोर, नानक आखे विचार, सिफ ते गंड पवे दरबार। पौड़ी। आपे कुदर साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, करे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहर वार, खोटे सच्ची दरगे सुटिए किसे आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवे हा करुणी सार, सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सुबारण हार, सच्ची दरगे मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत दिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाय काराया, मेहरबंद बादशाह फजू खुदाए, एक तू ही मेला पहला। न देव दान वानरा, न सिद्ध साध का तरा, आस्ते एक दिगर कुई, एक तू ही महला पहला। न दान दे देहंद आदमी, न सप्त जेर जमी, हस्ते एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। न सूर सस मंडलो, न सप्त दीप न जलो, अन्न पौन थिर न कोई, एक तू ही महला पहला। न रिजक दस दिया कसै, हमारा एक आस वसै, हस्ते एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। परंदे ना गिराजर, दरख्त आब आस कर, देहंद सुई, एक तू ही महला पहला। नानक लाल लिखिया सोए, मेट न साके कोए, कला तरे हिरे सुई, एक तू ही पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द साणिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कुड़ियार भरम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास सात न जाणिया, बिणना में दुख पाए आवण जाणिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला। शीहां बाजां चरगां खूहियां, इना खवाले कहा, का खा तिन वासख वाले एह चलाए रहा, नदियां बिच टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा, जेते जी जीवे लैसा जवाले ता कै असा, नानक जी जो सच्चे पावै ते तो दे ग्रह। महला पहला। एक मास हारी एक तनखाहें, एक न छत्ती अमृत पाहें, एक मिटियां में मिटियां खाहें, एक पौन सुमारी पौन सुमार, एक निरंकारी नामदार, जीवे दाता मरे न कोए, नानक मुठे जाहे नहीं मन सोए। पौड़ी। पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाए नाम ते आई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, बिरना में सब विश पेंजे खाई है,
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਈਐ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਰਾ ਸਲਾਹੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਦ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਗਾਵੇ ਤੁਦ ਪਾਵੇ ਜਲਨਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਦ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਬੂਤਾ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਕਹਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਦ ਪਾਵੇਂ ਤੇਗ ਵਗਾਵੇਂ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਦ ਪਾਵੇਂ ਜਾਏ ਦਸੰਤਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆਵੇਂ

गौड़ी गुआरे मैला तीजा। गुरते ज्ञान पाए जन कोए, गुरते बूझे सीजे सोए, गुरते सहज साज विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार। पूरे पाग मिले गुरे आए, सच सहज साज समाए रहाओ। गुर मिलिया तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते शांत वसे मन आए, गुरते पवित्र पावन सुच होए, गुरते शब्द मलावा हुए। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख होवे सो नाम ते आई, दर्शन सच्चे सच्ची पद होई। किसनू कहिए दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे सास समावा, गौड़ी गुआरे महला तीजा। सो थाउ सच मन निर्मल हुए, सच निवास करे ससोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब कुछ साचा आपे आपे। कर्म हुए सत्संग मलाए, हर गुण गावे बैस सुथाए रहाओ। जो लोए जे वादूजे पाए, हर रस नचाखे फीका लाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नामे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाख्या सहस पाए, गुर कृपा ते सच समाए, सचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल धार। नाम समावे जो भांडा होए, ऊंदे भांडे टिके न कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जो शब्द प्यास, गौड़ी गुआरे मैला तीजा। एक गावत रहे मन साधन पाए, होमे बिच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मंत्र राता नाम सुहावे रहाओ। एक आवे एक भक्त करे, नाम न पावे बिन स्नेह, सच्ची पद गुरु शब्द प्रचार, अपना पिर राख्या सदा अवतार। भक्त करे मूर्ख आप जनावे, नचना टपे बौद्धक पावे, नचिए टपिए भक्त न होए, शब्द मरे भक्त पाए जन सोए। भक्त बछल भक्त कराए सोए, सच्ची भक्त बिचों आप खोए, मेरा प्रभ साचा सभ्य जाने, नानक बख्शे नाम बखाणे, गौड़ी गुआरे मैं नानक बख्शे नाम पछाणे, गौड़ी गुआरे मैला तीजा। मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर माए पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनू बख्शे दे बड़े आई, गुरप्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार करमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैं गुरमुख द्वारा, गुर अंकुश मार जवालन होर। मन साध साधे जन कोए, चर चरिता निर्मल होए, गुरमुख ए मन लया सुवार, हम में बिचों तजे विकार। जो तो राखियन मेल मिलाए, कद न बिछड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे, गौड़ी गुआरे मैला तीजा। होमे बिस जग बौराना, दूजे पाए परम पलाना, बहु चिंता चितवे आप ना पछाना, धंधा करत्या अंधन विहाना। हृदय राम रबो मेरे भाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता, जग जीवन से जुग चारे जाता, होमे माँ गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म विदाता। से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए, तावत वर्जे ठाक रहाए, नाम नवन गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसे मन आए। राम राम करते हैं सुख शांत शरीर, अंत बसे न लागे जंपीर, आपे साहब आप वजीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर, गौड़ी गुआरी मैला तीजा। सो क्यों विसरे जिसके जी पुराना, सो क्यों विसरे समाहे समाना, जिस सेव है दरगह पत परवाना, हर के नाम बिटू पर जाऊं, तू विसरे तद ही मर जाऊं रहा। तिंतु विसरे जे तुध आप भुलाए, तिंतु विसरे जे दूजे पाए, मनमुख ज्ञानी जो नहीं पाए। जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए, गुरमति हर नाम समाए। जिन पोते पुन से ज्ञान विचारी, जिना पोते पुन तिन होमे मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी, गौड़ी गुआरी मैला तीजा। तू कत क्यों कथिया जाहें, गुर शब्द मारन मन माहे समाहें, तेरे गुण ने कीमत न पाहें।
ਜਿਸਕੇ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਕਤ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੈਲੀ ਥਾਂ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਤਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਲਗੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨਕੂ ਜੈਕਾਰ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਮੈਲਾ ਤੀਜਾ। ਏਕ ਸਰੂਪ ਰੰਗਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੰਗਾ, ਭਿਨ ਭਿਨ ਵੇਖੇ ਹਰ ਪ੍ਰਵਰੰਗਾ। ਏਕ ਚਰ ਜੇ ਕੋ ਹੈ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਜ ਪਰਵੇ ਪਰ ਸੁਭਨੀ ਥਾਈ, ਕਹਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਆਪੇ